शांति शांति ती ती ती दो दाय चिम याय हो चुई दो दाय दो चिम यू तेम तेमा ताती गुन शिवली चिम की